0: Mahale, Rwada, lawyers lingo in Mezina, Chica to Jaman, Chenu Yorba. Curry some Yawji Tenzin, Diga de Gurgil Tenet, and the Chikang and Tomichi at Yungurba. Chesa, Pug and let Tinjig some little teach, Rwa Yagal, the Tangnichi Alganga Homer and the Swing, Pigan, the D is Gale Yun Yotin, the Jenlon Yun Yotin, the Tangnichi Tole, Gumadang, where the case in Brisha. Timodoji. मुने जिक लम्सा जिक सेमजे दा सेमजे दा नम्रा जे देवी ने तिंजे के भाग्य द बुगा निलेवी ने ती मुने का मित मीबार जिमा जिजो जेवे तो कांगे मांग बच चाय उनको रवान दे
1: जी जी जी तब वाद की ना तंदे ती गेम वंजला ती गेम लो सुम्बन ने जी दा कैसे जिक नंगा जो नज़द दा मीस साइड मी दा खंडा देवी शुगो गेला की ना जो सुम्बन ने जी गांगे यों सिगर बा गिबो यंगर यां सुसु लुबो गांल नज़ाय जाम मंजर ना सिगर बा अन दा गांज दा बा दा चौंसे दा बा यिंबे ने गेला थिंग सुम्बन ने जी गेला नज़द दा बा सेम काम नज़द जी ने रे करी ने जी ना ना दा दिनजे नया करे छे वी ना सा जे यां जिक जिक गे जे इनजे गोल शिव लुब गुर बा अन दिनजे गे सोंजा जे जा भाजु दी यां ने जिक सांवा छे
0: Kyonyo ne shubi ne chik chagyen re, tenzu tol da hang sanya rwa da menga takche chi

0: सेम कोने शुरू है यंग द रिरे जी सेम सिंबदिनी कावे जोंकी लुजु छिमो रिजे जाजु छुदी
1: सेंगे नम छ तंग न जुन नम ग्यु ने सु थु जे थान थु चिन गम लि न यंग नम बिन छि थान छो बु छो मु न्याम जुम छि बे थु जे या छि जि रे दवा हक बा थु द ल्वे सा थान थु चिन गम लि न त निम दो जुन बे न बदि थे वे या थु जे थे वे ब था गान जुम जे छे दो मा न जु मि था मि वा गे जवा था जे दोंग दि ने ले थे वे या सब सिम बे न वा रि स्टोल